आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बरसों बाद ऊंट में निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे।

0: कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना
0: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: घोड़ा चतुर
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला। गा
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मर

Mm-hmm.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या है चितचोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चितचोर?
1: You sing like किशोर but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling.

0: सच है बिल्कुल,
1: तू है बुलबुल,
0: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल,
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया चले छम छम छम छम छम छम, एक गण हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, एक गण तुम काहे को इनकार करता है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए टोनी फर्नांडिस बेबी

जूली देखो, हाँ मायके, नहीं तू मत मायके, मायके मत जाइयो। ए चो

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार लेटर्स चॉइस और कीजिए दिए गए अक्षर से मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: हाय हेलो एंड नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार अंतरा मस्ती। अंतरा के शब्दों से हम मस्ती करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए। और आज तो शनिवार है ना, इसीलिए शनिवार पर एक गाना और एंजॉय कीजिए।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार लेटर्स चॉइस और कीजिए दिए गए अक्षर से मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और दोस्तों, बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह सरफराज जी साउथ अफ्रीका से। वालेकुम सलाम भाई जान, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और साथ ही साथ नाहिद अंसारी जी, वालेकुम सलाम आपका भी। और सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भगत जी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। MD फैज आलम जी, वालेकुम सलाम, वेलकम है आपका भी। और अशोक देशमुख जी आज मैसेज करने में देर कर दिए, वेलकम है आपका भी। गजानन सलोकार जी, वेलकम है आपका भी। और मुबारक हुसैन जी, वेलकम है आपका भी। और प्रिंस पासवान जी और राजेश गौतम जी, बहुत बहुत वेलकम है। और जितने भी दोस्त, अब मैसेज करना होगा व्हाट्सएप नंबर पर ही आज इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि व्हाट्सएप पर इसलिए क्योंकि मुझे आपको कॉल करना पड़ता है ना, इसलिए अब आपको व्हाट्सएप पर ही आज कॉल मतलब मैसेज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के मैसेज को मैं शामिल नहीं करूंगा, हाँ अगर वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वो फीडबैक के रूप में शामिल होगा। और मिसालंगा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। संध्या पटेल जी हैं और वर्जू जी हैं, बहुत बहुत सभी का वेलकम करते हैं। और प्रोग्राम का आगाज करते हुए इस गाने के साथ, और इस गाने, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब अगर कुछ समझ लो कि यानी कि कुछ खुशी वाली बात होती है, कुछ अच्छा लगता है, तो ये गाना गाता हूं मैं, तो इसीलिए एंजॉय कीजिए इस गाने को। और आरजे सोनी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका।

आ गया और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरे में आए शब्दों से आप कोई भी गाना मुझे लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है।

0: वेलकम बैक। और बहुत से और से दोस्त यहाँ पे जुड़ गए हैं और जुड़ चुके हैं रणवीर, क्या नाम है, रणवीर सिंह जी, ये मुरादाबाद यूपी से, बहुत बहुत वेलकम है। और आज फरमाइशी वाला प्रोग्राम नहीं है, आज आपको पार्टिसिपेट करना होगा व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर है 9135841232, यानी 9135841232 पे। राजेश गौतम जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और अमीना खान जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग, और मैं ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग हो गया है। अच्छा, तो बहुत बहुत वेलकम है अमीना खान आपका भी। बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड अरुण मंडल जी लिखते हैं कि आरजे अमन जी हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और नंदनी मां लिखते हैं कि अच्छा, यानी कि वेलकम माँ जी आपका भी। और अब देखते हैं कि मेरे पास सबसे पहला व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आया हुआ है, किस दोस्त का मैसेज आया हुआ है। ओ माय गॉड, राजेश गौतम जी सबसे पहला। अच्छा चलिए, इन्हें मैं कॉल लगाऊंगा। ज्योति जी हैं, नाहिद जी हैं और संध्या पटेल जी हैं, साथ ही साथ MD फैज आलम जी हैं, प्रमोद कुमार जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, सर्वेश भगत जी, सर्वजीत जी, गजानंद जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज, मनीषा शर्मा जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं। तो चलिए सीधे कॉल लगाते हैं राजेश गौतम जी को। राजेश गौतम जी बहुत बहुत वेलकम है। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। राजेश गौतम जी,
1: हेलो।
0: हाँ जी, कैसे हैं राजेश गौतम जी?
1: बढ़िया, नमस्कार मनोसर जी।
0: नमस्कार, वाह क्या बात है, बहुत दिन बाद आज प्रोग्राम में शिरकत किए हैं और पहले पहले आते ही छक्का लगा दिए फर्स्ट बॉल पे।
1: क्या बात की सर जी, हमें नहीं लगा था हो पाएगा आज।
0: सबसे पहला आपने भेज दिया, कह रहे कि नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे हो सकता। बताइए तो क्या कर रहे हैं आज, कैसे कैसे आना हुआ ये बताइए। आज लग रहा है कि सूरज यानी पूरब के बजाय पश्चिम से निकल गया है, आज कैसे कैसे आना हुआ?
1: ऐसा कुछ नहीं है।
0: हाँ बताइए।
1: और सब बढ़िया?
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, एकदम झक्कास है। तो बताइए आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना सुनकर लाए हैं आप?
1: अंतरा के शब्दों गाना सुनकर लाया हूँ, बरसात हो रही है, बरसात
0: नहीं आपने
1: तो, अच्छा फरमाइश है, रातों को जगाया।
0: जी बिल्कुल, तो आपने ये वो जो जो अंतरा के शब्दों से होता है वो ना भेजिएगा, उल्टा पुल्टा गाना नहीं। ठीक है, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

ओके जी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और सबसे पहले मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है ज्योति खड़वाड़ी जी का। अच्छा जी, ज्योति जी का है और उनके पास है आरजे वंशिका जी भी है। ओके, और नाहिद जी है, आरजे रत्ना जी भी है। ओ माई गॉड, जागीर खान जी है, सुनीता गोप जी है, प्रमोद जी है, गजानंद जी है एंड सर्वेश भगत जी है, नीलेश जी है, राजेश गौतम जी है, अशोक देशमुख जी है एंड यहाँ पे शिवम कुमार जी है, सरोजी जी है, नंदरी माँ जी है, संध्या पटेल जी है, मतलब बहुत से दोस्त है हमारे, आनंद जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। तो मैं सीधे कॉल लगाता हूँ ज्योति जी को।

0: आपका वेलकम है अंतरा मस्ती में। कैसी हैं आप?
1: थोड़ा बुखार है।
0: बुखार है? ओहो, अपना हाँ। ख्याल रखा कीजिए ना।
1: मैं मैसेज कर रही थी, कॉल मत करना।
0: अच्छा, तो देखिए, अगर जिनको नहीं कॉल करना है वो पहले ही मुझे लिख के भेज दें अपने गाने के साथ।
1: मैं लिख रही थी
0: कि नो कॉल है ना। जो भी दोस्त है अगर उसी समय जब अपना वो गाना भेज रहे हैं ना, उसी समय लिख के भेज दें कि नो कॉल है ना, मैं बिल्कुल कॉल नहीं करूंगा। और अगर नहीं रहेगा ये मैसेज नो कॉल वाला तो मैं तो कॉल कर ही दूंगा है ना। जो भी दोस्त, मैं अभी से बोल देता हूँ कि जो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं आपको कॉल लगाऊं, तो बिल्कुल अपने गाने के साथ जो आप सुनना चाहते हैं, मतलब जो अपने गाने की फरमाइश भेजी है उसके आगे लिख के भेज दीजिए नो कॉल, मैं बिल्कुल नहीं कॉल करूंगा। या पहले लिख दीजिए या बाद में, जैसे भी हो है ना, मुझे समझना चाहिए कि हाँ भाई आपने ये, आपको कॉल नहीं करना है, बस आपके गाने को प्ले करना है, तो मैं जरूर ऐसा करूंगा, है कि नहीं। फिलहाल बता दीजिए अंता के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
1: एक मिनट देखती हूँ।
0: हाँ, देख लीजिए।
1: धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में
0: आना। ओहो, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

और अब यहाँ से शुरू हो रहा है अंतर। तो इस अंतर में जो भी शब्द आए उन शब्दों को ध्यान से सुने और उन शब्दों से जो भी गाना आपको होगा याद वो गाना आप मुझे लिख कर भेजे 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

और इस बार मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। सबसे पहले आरजे सोनी जी का, और उनके बाद इन्हें पूजा भास्कर जी का, और आरजे इनवंशिका जी का, और हमारे यानी के प्रमोद कुमार जी का, बिट्टू कुमार जी का, नाही जी का, और यहाँ पे नीलेश गुरुकार जी का, आरजे रत्ना जी का, सरफराज जी का, सुनीता गोप जी का, जाकिर जी का, ज्योति जी का, गजानंद जी का, फैज जी का, मनीषा जी का, संजय सानी जी का, राजेश गौतम जी का, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं, बहुत सारे। किन किन किन का नाम लूं मैं, सीधे गाना प्ले करता हूँ। आरजे इन सोनी जी का, जिन्होंने भेजा है फोटो पे बस तेरा नाम है, सुनवा दिया, बहुत प्यारा गाना है।

यस आई लव यू बॉस। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अंतरा, तो इस अंतरे में जो भी शब्द आए उन शब्दों को ध्यान से सुनिए और उस पर जो गाना आपको याद आ रहा है वो गाना मुझे लिख कर भेजिए 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

और संध्या जी अगर दो मैसेज भेजेगा ना तो आप आगे होते हुए भी पीछे चल जाएगा, इसलिए एक ही मैसेज भेजा कीजिए। और उस वो मैसेज सिर्फ एक गाने का हो, सिर्फ आप उसमें गाने का बोल लिखे, जो गाना हो बस मैं समझ जाऊंगा, कॉल कर लूंगा।

मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे, ओ माय गॉड। लेकिन सबसे पहला इन प्रमोद कुमार जी और आवाज की मलकार जी, रत्ना जी, आनंद जी भी है। अच्छा, ये लिखते हैं कि ओ सर जी, यहाँ पे फीडबैक शामिल नहीं होगा, आपको वहाँ भेजना होगा फीडबैक के लिए, उधर यानी एप्लीकेशन में। यहाँ तो सिर्फ गेम चल रहा है। ज्योति जी है और यहाँ पे संजय साहनी जी है, जाकिर जी है, एमडी फैज जी है, सर्वेश भागा जी है, मनीषा जी है, गजानंद जी है, सुनीता गोप जी है, संध्या जी है, एंड रवि महाराज जी है, और रंजन जी है, सर्वजीत जी है, सत्येंद्र यानी कबीर सिंह जी है, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, और पूजा भास्कर जी है, मतलब बहुत से दोस्त है, सभी का वेलकम करते हुए सीधे यहाँ पे कॉल लगाते हैं हम प्रमोद कुमार।

0: वेलकम बैक और बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई प्रमोद जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और क्या कर रहे हैं भाई?
1: कुछ नहीं सर, ऑफिस से आया था, बस बैठा ही था, चाय पी
0: थी। अच्छा जी, तो मतलब यानी कि कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन रेडियो हॉट स्टार सुन रहे हैं ना?
1: वो बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, वो तो सुनता ही।
0: अच्छा, ओके जी। तो और बताइए, तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं आप?
1: चेहरा क्या देखते हो,
0: चेहरा क्या देखते, दिल में उतर के देखो ना जी, वही मैं भी कहता हूँ। इंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया। वेलकम जी।

मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। सबसे पहले जाकिर खान जी का, ओहो, नाहिद अंसारी जी हैं, ज्योति जी हैं, सरफराज जी हैं, नीलेश जी हैं, मनीषा जी हैं, और संजय साहनी जी हैं, आरजे रत्ना जी हैं, आरजे वंशिका जी भी हैं, गजानंद जी हैं, और फैज जी हैं, मतलब राजेश गौतम जी हैं, एक साहब और भी जुड़े हुए हैं, इमरान भाई बहुत बहुत वेलकम, ये भी है संध्या पटेल जी, सर्वेश भगत जी, दिगंबर जी, पूजा भास्कर जी, नंदिनी माजी, मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज आए हुए हैं मेरे पास, लेकिन सीधे कॉल लगाते हैं जाकिर जी को।

0: जाकिर खान जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छे।
0: ओहो क्या बात है, एकदम छक्का मार दिए जल्दी ही आप, आज नंबर लग गया।
1: लग जाए जब नंबर तो
0: जी बिल्कुल,
1: कोशिश तो करते रहते हैं।
0: बिल्कुल कोशिश करते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं आप लोग का नंबर स्पेशल कॉल में है, क्योंकि आप लोग स्पेशल स्पेशल गाने लेके आते हैं।
1: स्पेशल गाना भी सोच के रखा
0: था। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ अभी भी है यानी कि मौका है, अगर यानी कि तीन बार आते हैं तो स्पेशल गाना सुन सकते हैं, है कि नहीं?
1: नहीं अब देखते हैं सर।
0: जैसे ये मेरे कहने का मतलब कि अभी एक नंबर आ गया, ठीक है, अगला नंबर आएगा उसमें मैं आपको यानी कि कॉल नहीं करूंगा, जो थर्ड नंबर आएगा ना उसमें कोई भी गाना सुन सकते हैं, स्पेशल गाना जो आप जो दिल करे वो सुन सकते हैं।
1: जी सर जी,
0: हाँ ये मैं कह रहा हूँ जो यानी हाँ। इसलिए कोशिश कीजिए कि तीसरा नंबर जरूर आए, स्पेशल गाना कोई भी सुन सकते हैं।
1: कोशिश तो कर रहे हैं।
0: हाँ हाँ कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाए हैं आप?
1: जी आपके करीब हम रहते हैं,
0: आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं,
1: अपना नसीब
0: आरमा है तुझे पाने का, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।
1: थैंक यू सर।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो अंतरा में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजिए 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे। और दोस्तों मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि कल जो संडे मस्ती होता है, यानी कि पहले होता था रेडियो हॉट स्टार पे, अब वो होगा यानी 3 बजे से रेडियो गाना पे, और जिसे यानी पेश करेंगे आरजे वंशिका जी और यानी के परमार जी। तो आप जरूर सुने 3 बजे से उनका प्रोग्राम को रेडियो गाना पे।

0: और इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है आर क्या नाम है ये नाहिद अंसारी जी का, उनके बाद है आरजे बंसिका जी से, यानी सेकंड हो गए, थर्ड ज्योति जी हो गए, फोर्थ यानी प्रमोद कुमार जी, एंड फिफ्थ आरजे रत्ना जी, एंड उनके बाद है मनीषा शर्मा जी है, एंड यहाँ पे संजय सानी जी है, गजानंद जी है, और अस्मिता गोप जी है, एम डी फैज जी है, नीलेश जी है, राजेश गौतम जी है, रवि मारे जी है, और हमारे ये इमरान भाई जी है। तो इमरान भाई का नंबर सेव करना पड़ेगा, मुझे दिक्कत हो रही है इनका नाम लेने में, नंबर इनका सेव कर दिया, इमरान भाई ना, इमरान भाई नहीं लिखेंगे, अरे चलिए भाई लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इमरान भाई नंबर सेव कर दिया आपका। और हमें दिगंबर जी है, और पूजा भास्कर जी है, सर्वेश भगत जी है, संध्या पटेल जी है, और सर्वजीत जी, मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज है मेरे पास, सीधे कॉल लगाते हैं नाहिद अंसारी जी को। बहुत बहुत वेलकम है नाहिद अंसारी जी। वालेकुम सलाम, एक ही बार में कॉल उठा ली, वाह, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए कि सबको एक बार में कॉल उठा ले।
1: फोन मेरे हाथ से उठा
0: ले। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे रिंग होता है तो ज्यादा देर तक इंतजार अच्छा नहीं लगता है कि नहीं?
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए तो बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाई है
1: आप? आपसे पहले ना आपके,
0: ना कोई आया है ना कोई आएगा, है ना
1: जी,
0: सुनवा दिया।

0: वेलकम बैक। और इस बार मेरे पास सबसे पहला जो मैसेज पहुंचा है वह है संध्या पटेल जी का। उनके बाद है नाहिद जी है, आरजे रत्ना जी है, आरजे वंशिका जी है, ज्योति जी है, बिट्टू जी है, जाकिर जी है, नीलेश जी है, यहाँ पे सुनीता गोप जी है, मनीषा जी है, फैज जी है, गजानंद जी है, सर्वेश भगत जी है, रवि महर जी है, पूजा भास्कर जी है और कारण रूपचंद गोयल जी है। मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज है मेरे पास, तो सीधे कॉल लगाते हैं संध्या जी को। संध्या पटेल जी बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरा मस्ती में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो,
1: हाँ हाँ भैया आ रही है आवाज।
0: ओके जी, तो संध्या पटेल जी कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया?
0: मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और एक हफ्ता हो गया आपको यहाँ आए हुए क्योंकि अंतरा मस्ती से आपने शुरुआत किया था।
1: यस भैया, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है, जिस दिन से मैंने सुना ना मेरे को बहुत वेट रहता है।
0: अच्छा जी, तो आपने अंतरा मस्ती से स्टार्ट किया था, एक हफ्ता हो गया आपका और तब से आप कंटिन्यू सुन रही हैं?
1: यस भैया।
0: जी जी
1: जी भैया।
0: तो बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई है एमपी भोपाल से?
1: क्या भैया
0: बोल रहे हैं कि अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई है एमपी भोपाल से?
1: हाँ जी भैया, नजर के सामने।
0: नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम
1: जी।
0: सुनवा दिया
1: जी।

बार बाजी मारी है मेरी नंदनी माँ जी। ओहो, सबसे पहले इनका मैसेज पहुंचा हुआ है मेरे पास, और उनके बाद है हमारे ये सुनील जी हैं, नाहिद जी हैं, बिट्टू जी हैं, और प्रमोद जी, ज्योति जी, सुनीता गोप जी, जाकिर खान जी, संजय सहनी जी, मनीषा जी, और गजानंद सुनकार जी, और नीलेश बिरोकार जी, सर्वजीत सेठी जी, जितेंद्र जी, इमरान जी, आर जे वंशिका जी, आर जे रत्ना जी, ओ माय गॉड, दोनों एक ही साथ रह रही हैं, जहां भी रह रही हैं, वाह वाह। और राजेश गौतम जी है, सर्वेश बगा जी है, पूजा भास्कर जी, कुंता बेन जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज है, मैं किस किस का नाम लूं, ओ माय गॉड, बहुत से ज्यादा दोस्त है। फिलहाल कॉल लगाते हैं माँ जी को।

0: माँ जी आपको मेरा प्रणाम है, कैसे हैं आप?
1: हेलो
0: जी, माँ जी, जी माँ जी प्रणाम है आपको।
1: अच्छी हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।
0: धन्यवाद माँ जी। और बताइए क्या कर रही हैं आज, स्पेशल क्या बनाया है मेरे लिए?
1: आज ना लौकी की सब्जी बनाई हूँ।
0: वाह वाह, लौकी की सब्जी
1: बना रही हूँ, मतलब
0: अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा एक चीज है, अगर अगर मेरा वो क्या बोलते हैं यानी कि बेस्ट आरजे में अगर मेरा नाम आता है या मेरा मतलब रेडियो का नाम आता है यानी कि बेस्ट यानी कि चैनल में, तो छत्तीसगढ़ आना हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। अगर अगर मुझे लोगों ने वोट किया तो जरूर मैं आऊंगा, है ना?
1: मैं आपका इंतजार करूंगी और मैं बहुत बहुत खुश हो जाऊंगी आप आएंगे।
0: लेकिन लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा माँ जी कि अगर लोग मुझे वोट करेंगे। जब तक वोट नहीं करेंगे मैं विनर कैसे बनूंगा बताइए? हाँ, तो जब तक लोग वोट नहीं करेंगे तो मैं विनर बनूंगा नहीं, इसीलिए अब ये लोगों के हाथ में है, हमें हमें ये विनर बनाना है कि नहीं माँ जी? बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं विनर बन जाऊं। हाँ, और बताइए तो माँ जी अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाई हैं आप? हेलो हेलो, लग रहा है नेटवर्क कट गया। हेलो, कोई बात नहीं, नेटवर्क माँ जी का कट गया, मैं इनका गाना प्ले कर रहा हूं।

0: और इस बार फाइनली नंबर लग ही गया है आरजे वंशिका जी का, बहुत मेहनत इन्होंने किया है। और उनके बाद है यानी कि सुनील जी हैं और सुनीता गोप जी और प्रमोद कुमार जी, नाहिद जी, ज्योति जी, आरजे रत्ना जी और सर्वजीत सेठी जी, जाकिर जी, रवि महाराज जी, सर्वेश भगत जी, एमडी फैज जी, इमरान भाई जी, गजानंद जी, संध्या जी, जितेंद्र जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं। सीधे कॉल लगाते हैं हम आरजे वंशिका जी को। आरजे वंशिका जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और फाइनली मतलब नंबर लग गया, बहुत इसलिए कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: तो
1: और कार्यक्रम बहुत बेहतरीन चल रहा है।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बताइए आरजे वंशिका जी, आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाई हैं?
1: गाना सुनना है दयावान मूवी का, आज फिर तुम पे प्यार आया है।
0: आए है, क्या गाना है, यानी पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में लाजवाब गाना, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।
1: थैंक यू जी।

आवाज की मल्लिकार्जुन रत्ना जी, सबसे पहला तो मैसेज आपका आया था, लेकिन आपने दूसरा जो मैसेज किया तो आप बहुत पीछे चली गई हैं और सबसे और बाजी मार ली है नाहिद अंसारी जी, ओके जी। और उनके बाद है हमारे यानी कि सुनील कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, जाकिर जी हैं और शाहिद रजा जी हैं और संजय सानी जी हैं, ज्योति जी हैं, सुनीता गुप्त जी हैं, महक जी हैं, इमरान भाई जी हैं, इशाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी गजानन जी हैं और अब आरजे रत्ना जी हैं क्योंकि आपका नंबर बहुत पीछे आ गया। एमडी फैज जी हैं, जितेंद्र जी हैं, रवि महाराज जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, रूपचंद जी हैं और कुंता बिन जी हैं, नंदनी माँ जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं, संजय जी हैं, मतलब किसका किसका नाम लूं मैं सीधे। अच्छा यहाँ पे कॉल नहीं लगाना है, इनका गाना प्ले करना है क्योंकि अगर इनका तीसरा नंबर आता है इनके मनपसंद जो भी गाना प्ले होगा तो ये नहीं जी आपका गाना मैं प्ले कर रहूंगा इस गाने को थोड़ा सा सुनने के बाद।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। अंतरा से इस अंतर में आए शब्दों से गाने लिख के भेजिए मुझे 9135841232 पे। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है।

जिंदगी बन गए हो तुम। और इस बार फाइनली नंबर लाही दी आवाज की मलका आरजे रत्ना जी, और उनके बाद है हमारे इमरान भाई जी। अच्छा जी, ये भी अब बहुत जल्दी आने वाले हैं लग रहा है। नाहिद जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, गजानंद जी हैं, जाकिर जी हैं, बीटू कुमार जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं, ज्योति खरवड़ जी हैं, और प्रमोद कुमार जी हैं, सर्वजीत शेट्टी जी हैं, जितेंद्र जी, एमडी फैज जी हैं, सर्वेश भागा जी हैं, रवि महाराज जी हैं, पूजा भागा जी, रूपचंद जी, सैयद यूनुस जी, कुंता बेन जी, नंदनी मां जी, मतलब बहुत से दोस्त, संध्या पटेल जी, सभी का वेलकम करते हैं।

0: बहुत बहुत बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है आरजे रत्ना जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: बहुत बढ़िया है, आप बहुत देर से नंबर लगा रही हैं, लेकिन अब जाके आपका नंबर लगा और कभी कभी गलती कर देती
1: है।
0: और एक बार नंबर आपका लगा था लेकिन आपने दूसरा मैसेज कर दिया, सीधे उठा के फेंक दिया ऊपर आपको।
1: जी जी, वंशिका जी और मैं साथ साथ थे तो सोचा वही था कि वंशिका जी के बाद में हम ही आएंगे। हाँ, लेकिन क्या करें,
0: नहीं, जैसे जैसे वो तो आएगा वैसे मुझे लेना है कि नहीं।
1: हाँ, वही तो
0: बिल्कुल। तो बताइए आजकल क्या करें, आजकल बहुत बिजी हैं आप लग रहा है।
1: हाँ
0: जी, मुझे लग रहा है कि आप आजकल बहुत ज्यादा बिजी चल रही हैं। तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
1: जान ओ मेरी जान।
0: जान ओ मेरी जान, बहुत प्यारा गाना है, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। अंतरा में आए शब्दों से गाने लिख के भेजिए मुझे 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

वेलकम बैक और बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे मैसेज आए हैं। ओ माय गॉड। लेकिन सबसे पहला तो एक बार बाजी मार चुके हैं ज्योति खटवाड़ी जी फिर से, तो इनको तो दोबारा कॉल करना नहीं है, इनका गाना प्ले करना है। और बता दूं कि यहाँ पे नाहिद जी हैं, जाकिर जी हैं, प्रमोद जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, एंड यहाँ पे सुनीता गोप जी हैं, शमशाद जी हैं, बीके टेलर जी हैं, महक जी हैं, शाहिद राजा जी हैं, एंड सरोजी सेठी जी हैं, बिट्टू कुमार जी हैं, इमरान भाई जी हैं, एमडी फैज जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, रवि मोहरे जी, गजानंद जी हैं, संध्या पटेल जी, कुंता बेन जी, जितेंद्र जी हैं और विष्णु जी हैं। मतलब क्या ही बताऊं सभी के गाने, लेकिन मैं गाना एक ही प्ले करूंगा ना, जीना सिर्फ मेरे लिए ज्योति जी का।

मुझे अभी मैसेज आ रहा है कि इसका क्वालिटी अच्छे नहीं है। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ दूसरा गाना बजाने के लिए, और इसी का मतलब गीना सिर्फ मेरे लिए का ही। मैं देख लेता हूँ, कोई और जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ, एक सेकंड लगेगा मेरे पे। डाउनलोड हो गया, सुनवाते हैं इसी गाना का दूसरा।

ओके शायद इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है इसलिए मैं सीधे यानी के कॉल पे आता हूँ। और सबसे पहला मेरे पास मैसेज आया इशाक हुसैन जी का, बहुत बहुत वेलकम है इशाक भाई। नाहिद जी है, सुनीता गोप जी, सुनील कुमार जी, महक जी है, सरफराज जी है, जाकिर खान जी, ज्योति जी, प्रमोद जी, शमशाद जी और जितेंद्र जी है, बिट्टू जी है, शाहिद राजा जी है, सर्वे जी है, मतलब सभी बहुत से दोस्तों का मैसेज है मेरे पास। सीधे कॉल लगाते हैं इशाक जी को।

0: भाई शाक जी बहुत बहुत वेलकम है आप। वालेकुम सलाम, कैसे हैं?
1: बढ़िया है जी
0: भाई, क्या बात
1: है,
0: बहुत दिन बाद है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत वेलकम है।
1: हम रेडियो से जुड़े हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है सब, क्योंकि मतलब हमें हो गया है, दो महीने के बाद में जुड़ पाया हूँ रेडियो से।
0: जी जी बिल्कुल, और दो महीना मैंने बहुत आप लोगों को मिस किया भाई, सच में वही सोचता था कि भाई हमारे इमरान भाई कहाँ गायब हो गए हैं, भाई शाहक भाई कहाँ है, शमशाद भाई सभी गायब है ना।
1: सब
0: जी बिल्कुल, तो बताइए आज। जी जी हम समझ सकते हैं बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आज बताइए,
1: आपने सर्वेश भगत जी लोगों को बहुत ही मिस किया, सभी लोगों को।
0: जी जी जी,
1: मतलब 6 बजे से महफिल जम जाती थी हम लोगों की।
0: हाँ हाँ,
1: अब 2 महीने से हम लोग तो फ्री ही हो गए, हाँ, मतलब जुड़ ही नहीं पाए लोगों।
0: जी
1: से
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं। तो इशाक भाई, आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं आप?
1: कम से कम इतना कहा होता,
0: होने लगा प्यार।

मुझसे प्यार है। ओके, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहला तो यानी कुंता बेनी जी का, ओके जी। और उनके पास है नाहिद जी हैं, प्रमोद जी हैं, जाकिर जी हैं, ज्योति जी हैं, एंड गजानंद जी हैं, जितेंद्र जी हैं, साईं राजा जी हैं, बिट्टू कुमार जी, शमशाद हुसैन जी, सरोज भगत जी, रवि मार जी हैं, एंड सरोजित शेट्टी जी, दिगंबर जी हैं, और पूजा भास्कर जी, नंदनी माँ जी हैं, एक साहब और भी है, पता नहीं कर रहा हूँ तो नाम मुझे नहीं पता है, अपना नाम बता दीजिए प्लीज। और मतलब बहुत से मैसेज और भी हैं मेरे पास, लेकिन सीधे यानी कॉल लगाते हैं हम इन्हीं को जल्दी से।

0: कुंतबिनी जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरा मस्ती में। कैसी हैं आप?
1: थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बहुत दिन बाद नंबर लगा है आपका, लग गया फाइनली।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी जी, बताइए।
1: बस बढ़िया, आप सुनाइए सर।
0: हाँ तो क्या कर रही है? हम एकदम बहुत ही बढ़िया है, एकदम बोले तो झकास बिंदास, मजे में चकाचक, एकदम जैसे
1: सर, भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो हमारी शाम सुहानी होगी।
0: अरे आपकी शाम सुहानी होगी, मैं तो सोच रहा हूँ नए नए दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, आप सबके लिए इन्हें खुश करने का तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ जी हाँ जी।
0: ओके जी,
1: हाँ जी सर, मेरा गाना है दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके।
0: जी, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, बहुत अच्छा गाना, सुनवा दिया, एंजॉय किया।

और इस बार बाजी मारी है सुनीता गोप जी। वाह, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और उनके बाद इसहाक जी हैं, नाहिद जी हैं, गजानंद जी हैं, शमशाद जी हैं, जाकिर जी हैं, ज्योति जी हैं, बीके टेलर जी, प्रमोद जी, महक जी, राजेश जी, जितेंद्र जी, इमरान भाई जी हैं, और सर्वजीत शेट्टी जी, दिगंबर जी, परवेश कुमार जी, और पूजा भास्कर जी, सर्वेश भगत जी, रवि महरे जी हैं, और पीकू राय जी, बिट्टू कुमार जी, और अमीना खान जी, खान अमीना जी, अच्छा अमीना खान जो भी कही है, और उनके बाद ये यानी कि शिवम जी, शाहिद राजा जी, कुंतब, मतलब बहुत से दोस्त है। ओ माय गॉड, तो सीधे कॉल लगाते हैं इनको, यानी कि सुनीता गोप जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है और अनामिका जी का भी वेलकम है।
1: हेलो।
0: हाँ जी अनामिका जी, ओ माय गॉड, ये तो आप ही हो, बहुत बहुत वेलकम है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, और क्या हाल है?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी नमस्ते, क्या हाल है अनामिका जी?
1: नमस्ते सर,
0: बोलिए।
1: हेलो,
0: आवाज नहीं आ रही है मेरी?
1: नेटवर्क नहीं है सर।
0: नेटवर्क नहीं है, गाना प्ले कर दूं सीधे?
1: ठीक,
0: ओके, चलिए सुनवाते हैं आपके आपके।

इमरान भाई जी, पी कुराई जी, सुनीता गोप जी और इशाक हुसैन जी और सर्वेश भागा जी, भारती पटेल जी, सर्वजीत सेठी जी, बी के टेलर जी, अमित तपड़े जी हैं, गजानंद जी हैं, सर्वेश भागा जी हैं, बहुत से दोस्त है, तो सभी का थैंक यू सो मच। और सीधे यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉल।

ओके जी, इस बार मेरे पास जो मैसेज पहुंचा हुआ है वो बीके यानी टेलर जी का सबसे पहले है, और बीके टेलर जी के बाद है हमारे राजेश कुमार जी हैं, गजानंद जी हैं, इसहाक हुसैन जी हैं, शमशाद जी हैं, भारती पटेल जी हैं, जितेंद्र जी हैं, इमरान जी हैं, ज्योति जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, संध्या पटेल जी हैं, और प्रमोद कुमार जी हैं, अमीना खान जी हैं, शिवम कुमार जी, मतलब बहुत से दोस्तों का, अमित तपड़े जी, देवपाल मोरे जी, बहुत बहुत बहुत से दोस्तों के हैं। सीधे कॉल लगाते हैं इनको, बीके टेलर जी को।

0: बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, अभी जाके नंबर लगा। लेकिन समझिए कि इस यानी राउंड का ये आखिरी कॉल है, क्योंकि इसके बाद से सेकंड राउंड स्टार्ट करने वाला हूँ मैं।
1: जी सर।
0: ओके, तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: तुझे प्यार से देखने वाला।
0: अच्छा, तुझे प्यार से देखने वाला है। ओके, एक दिल है। ओके ठीक है, तो एक दिल ही मैं गाना प्ले करूंगा, क्योंकि मैं तो कुछ और ढूंढ कर रखा था। नो प्रॉब्लम, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार लेटर्स चॉइस और कीजिए दिए गए अक्षर से मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो।

0: और ये रहा आज का पहला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: कभी तो जुगनू लगता है, कभी तो जंगली लगता है, कभी फंटूश लगता है, कभी आजाद लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है। अच्छा, तुझसे मैंने जीवन भर का नाता जोड़ा है।
3: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं। इस बार सबसे पहले बाजी मारी हुई है एक बार फिर से नाहिद अंसारी जी, यानी आज के यानी कि वो बन चुके हैं विनर। तो और उनके बाद सोनू गौतम जी हैं, ओके जी, जाकिर खान जी, ज्योति जी हैं, इमरान जी हैं, और पीकू राय जी हैं, और पूजा भास्कर जी हैं, दिगंबर जी हैं, रवि मोहरे जी हैं।

0: सर्वजीत शेट्टी जी, संसार जी, आरजे रत्ना जी, सुनीता गोपी जी, गजानंद सुलकार जी हैं, अमीना खान जी हैं, राजेश गौतम जी, कुंता बेनी जी हैं, महक जी हैं, अमित तपड़े जी हैं, संध्या पटेल जी, बीके टल जी, प्रमोद जी, मतलब ओ माय गॉड कितने सारे दोस्तों का मैसेज है, लेकिन सीधे कॉल लगाते हैं आज के विनर को। नहीं जी, आज बनी है विनर, आज के अंतरा मस्ती का आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के विनर बनने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: वेलकम जी। तो बताइए, आज कोई भी गाना सुन सकती हैं, जो चाहे वो सुन सकती हैं। बताइए कौन सा गाना
1: सुनना है।
0: मतलब ये भी सुन सकती हैं, चाहे जो भी आपको दिल करे, जो कि जो विनर बनते हैं ना वो कोई भी सुन सकते हैं, उनकी मर्जी को, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं।
1: ओके, साची कहो हमसे, ये गाना
0: सुनवा। साची कहो
1: जी,
0: साची कहो,
1: इसका अपना साजन के घर का गाना है।
0: ओके जी, तो मैं आपको ये गाना जरूर सुनवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बस यहाँ पे बने रहिए और जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार, जो दीवाना बना दे, है कि नहीं। थोड़ा सा ये शायद यानी कि कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में गाना है ना।
1: हाँ,
0: सुनवा दिए, एंजॉय कीजिए।

0: और बता दूं कि मतलब नहीं जी, आप ऐसे दोबारा खेल सकती हैं, लेकिन अगर अगर आपका नाम आता है एज एन विनर तो समझिए कि आपको कॉल नहीं किया जाएगा, आपका गाना नहीं प्ले किया जाएगा, आपके बदले अब जिनको रिकमेंड करेंगी उनके गाने को प्ले किया जाएगा, ओके। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अंतरा सुनवाता हूँ और अंतरा से समझिए और गाना मुझे भेजिए।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। नजर में चेहरा तराश लूंगा, तुम्हारी सांसों की प्यास लूंगा, ये ख्वाब इतना हसीन क्यों है, तुम्हें वफा पे यकीन क्यों है, मेरी तो ख्वाहिश तुम्हारी चाहत, मुझे भी कब से तुम्हारी हसरत, मिलाओ ना यूं निगाह हमसे।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना।

और इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज आ चुका है शमशाद हुसैन जी का जी, और आरजे सोनी जी का भी है, अमीना खान जी का है, और अहब सोनी गौतम जी का है, महक जी का है, रवि मोहरे जी का है, और सुनीता गोप जी, इमरान जी, इशहाक हुसैन जी और ज्योति जी, मतलब बहुत से दोस्तों के हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं भाई शमशाद जी को।

0: भाई संसार जी, बहुत बहुत बहुत बहुत आपका वेलकम है। कैसे हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। भाई मजा आ गया, बहुत दिन बाद आए हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत मिस किया।
1: और बताइए, आप खैरियत है?
0: जी जी एकदम। आप सबकी दुआएं हैं। ओके जी, तो बताइए।
1: हम लोग अवन भाई आम तोड़ने चले गए थे।
0: आम भाई, आपके आम तो बहुत तरह का पाया जाता है, मजा। और वहाँ का आम का तो भाई जवाब नहीं, वो तो पूरा मतलब इंडिया में मशहूर है।
1: वो तो है।
0: हाँ, वो तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो आम वहाँ पाए जाते हैं वो आम कहीं नहीं पाए जाते हैं। सारा आम का वहीं पे मतलब है, यानी कि बसेरा।
1: ये तो बात सही है
0: बिल्कुल। तो बताइए, तो मैंने इस बार तो खूब आम आपने खाया होगा।
1: बहुत सारे आम खाए, बहुत एंजॉय किया।
0: अच्छा, तो आज बताइए।
1: इसीलिए शायद हम रेडियो नहीं सुन पाए।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आम खा लिए ना। और अब बताइए,
1: खास करके अमन भाई पटियाले से आम ही खाने गया था हम।
0: अच्छा अच्छा, हम समझ सकते हैं भाई, वो तो आम फलों का राजा होता है ना। सबको सबको यानी अच्छा लगता है, सबको पसंद होता है जी। तो बता दीजिए, इसका जवाब क्या था?
1: मिलाओ ना यू निगाह हमसे।
0: बहुत जताते हो चाम से। हाँ ठीक है, और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: गाना शायद भेजा था, याद नहीं, वादा करके सजन नहीं आया।
0: ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: सुनाता हूँ, तब तक आप लोग ढूंढते रहिए गाने को बोल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। कहती है ये तेरी पायल, तूने किया मुझे घायल घायल, शाम सवेरे दिल में मेरे तूने मचा दी हलचल हलचल। तेरी मेरी प्रेम कहानी है सागर का गहरा पानी, लाखों दिन और लाखों रातें खत्म न होंगी अपनी बातें।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना।

बिल्कुल वादा करके सजन नहीं आया, बहुत लंबा गाना इसलिए मैं उसको आधा ही में प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा सोनू गौतम जी का, नाहिद जी का, भारती पटेल जी का, शमशाद जी का, रवि मौर्य जी का, इशाक हुसैन जी का, प्रमोद कुमार जी का, संजय सानी जी का, रुबीना नाथ जी का, और यहाँ पे सुनीता गोप जी का, विपिन त्यागी जी का, अमीना खान जी का, अमित तपे जी का, महक जी का, ज्योति जी का, सरोजीत जी का, सरफराज जी का। सरफराज जी आजकल पीछे क्यों चल रहे हैं, आप तो एक नंबर छक्का लगाते हैं। और संजय पटेल जी, कुंता बेनी जी, मतलब बहुत से दोस्तों के सीधे यहाँ पे कॉल लगाऊंगा मैं।

सोनू गौतम जी बहुत बहुत वेलकम है सेकंड राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो आप गायब रहते हैं, सेकंड राउंड में आते हैं और बाजी मार देते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, सोनू गौतम जी कैसे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी सोनू गौतम जी? ओके, इनका शायद इनके तरफ नेटवर्क इश्यू है, लेकिन मैं इनका गाना को प्ले कर रहा हूँ और इंजॉय कीजिए सोनू गौतम जी।

0: और बहुत से दोस्तों यानी के गायब हो गए, जैसे कि मनीषा जी अभी तक वो यानी पहले खेल रही थी और पता ना अभी वो कहाँ गायब है। फिलहाल ये अंतरा सुनिए, सुनवाते हैं आपको।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। कभी जोर दिल पे तो चलता नहीं, कोई जान के ना दीवाना बने। मोहब्बत का तूफान रुकता नहीं, भले लाख दुश्मन जमाना बने। बगावत की नहीं जाती।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं।

और मेरे पास सबसे पहला जवाब आया है यानी प्रमोद कुमार जी का। तो प्रमोद कुमार जी को एक बार मैं कॉल कर चुका हूँ शायद, ना नहीं किया हूँ, हाँ एक बार मैं इनको इनके कॉल लगा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा इनको कॉल नहीं लगाऊंगा, इनका गाना मैं प्ले करूंगा। और इमरान नहीं, इमरान भाई का सही नहीं है, ज्योति जी का सही है बिल्कुल, और ज्योति जी का, सुनीता गोप जी का सही है, और विपिन त्यागी जी का सही है, इशाक जी का सही है, एंड हमारे शमशाद जी का सही है, और यानी अमित तपड़े जी का सही है, और आरजे रत्ना जी का सही है, नहीं इनका नहीं है, और कुंता बेनी जी का सही है, बाकी दोस्तों का गलत गलत गलत है। ओके, तो सीधे इनका मैं गाना प्ले करता हूँ, और सही जवाब था मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है, ये जवाब था, लेकिन ये गाना सुना चाहते हैं हमारे यानी प्रमोद जी।

0: अगला अंतरा
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। तेरी हूँ तेरी, जो चाहे कसम ले ले, मुझको हमराही तू अपने गम दे दे। सारी उम्र है मुझको दर्दे जुदाई का सहना, रास्ते में खोई है मंजिल मेरी, मेरी साथ जाएंगी मुश्किलें मेरी।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे सरफराज जी का है और नाहिद जी का है, रुबीना नाथ जी का, विपिन जी का, सुनीता जी का, अर्जय रत्ना जी का, प्रमोद जी का, ज्योति जी का, इशाक जी का, संसार जी का, पूजा भास्कर जी का, अमित जी का, मतलब बहुत से दोस्तों का सीधे कॉल लगाते हैं। सरफराज जी बहुत बहुत वेलकम है आपका सेकंड राउंड में अंतरा मस्ती के। हेलो,
1: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाईजान
1: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: एकदम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चक्का चक ग्रांटी के साथ। और गाना कौन सा है जरा ये मुझे बताएंगे आप?
1: गाना बेकरार करके हमें यूं न जाइए।
0: अच्छा, बेकरार करके हमें, ये आपका गाना है। ओके, और जवाब बता दीजिए।
1: अच्छा, वो चाहा है तुझको,
0: चाहेंगे हरदम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेकिन आपका गाना वो 20 साल बाद का है ना, मैं सुनवा रहा हूँ।
1: ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम।
0: ओके, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

0: मुकेजी और ये रहा अंतरा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। तू सुबह का उजाला मेरे वास्ते, तू मेरे वास्ते दिलनशी शाम है, तू मेरे वास्ते दिलनशी शाम है, तेरे दिल में ठिकाना रहे उम्र भर।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार लेटर्स चॉइस और कीजिए दिए गए अक्षर से मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक। और इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है आरजे सोनी जी का। अच्छा, ये बाजी मारी हुई है। उनके बाद आरजे रत्ना जी हैं, नंबर सेकंड है, और थर्ड है यहाँ पे यानी कि पूजा भास्कर जी, और विपिन त्यागी जी हैं, और प्रमोद जी हैं, आनंद जी हैं, और ज्योति जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, एक साहब और भी हैं, क्या पता क्या नाम है इनका, नाम बता दीजिएगा। अस्थान सिंह लोधी। अच्छा ओके जी, ओके। और फिलहाल तो इनका मैं गाना प्ले करूंगा। भोजपुरी गाना में थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत होती है मुझे। देखते हैं शायद आई होप के यही उनका गाना हो। तो आरजे सोनी जी, मैं आपका गाना प्ले कर रहा हूँ, आई होप के यही गाना हो।

0: आप लोग मुझे फोन ना करें प्लीज, अगर जरूरत होगी तो मैं खुद ही कॉल करूंगा ना। और ये रहा अंतरा,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। अभी चैन चुराया है, ऐ अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुरा लूंगी। अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुरा लूंगी। जब चाहूं तुम्हें देखूं, आईना बना लूंगी।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: ओके, और इस बार बाजी मारी हुई है अमीना खान जी, ओके नाहिद जी हैं, और रूपचंद गोयल जी हैं, रवि महरे जी हैं, गजानन सलोकार जी, विपिन त्यागी जी, सुनीता गोप जी हैं, दिगंबर जी हैं, ज्योति जी हैं, सर्वजीत शेट्टी जी, आरजे रत्ना जी हैं, आनंद जी हैं, प्रेम और प्रमोद कुमार जी हैं, रूबीना नाथ जी हैं, और इसहाक जी हैं, और असम शाह जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं, तो कॉल लगाते हैं।
1: ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर नहीं करूंगी।
2: ओके जानू
0: जी, अमीना जी आपका बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में। वालेकुम सलाम, और कैसी हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
0: जी मैं तो बहुत ही एकदम झकास बिंदास, फर्स्ट क्लास मजे में, चकाचक ग्रांटी के साथ।
3: जी लगता ही आपके आवाज से। अब मुझे तो गाना कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सोची ही नहीं थी कि मैं जीत जाऊंगी।
0: ऐसा नहीं होता है,
3: प्ले कर दिया आपके।
0: नहीं नहीं, आपने सबसे पहला मुझे भेज दिया अपना जवाब। अपना पहले वो जवाब बताइए, वो जवाब क्या है?
3: आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगी।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। तो और गाना कौन सा सुनना चाहती है वो मुझे बता दीजिए।
3: नींद चुराई मेरी किसने हो सना।
0: अच्छा ओके, चलिए तो ये तो गाना बहुत अच्छा है। नींद चुराई मेरी किसने।

0: और यहाँ रहा अगला अंतरा, इसको ध्यान से सुनिए और गाने का बोल लिखकर भेजिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे 9135841232 पे। ये रहा
1: किसी गाने का अंतरा। मैं शायर नहीं दीवाना नहीं, मैं आशिक नहीं परवाना नहीं, मिली जब से नजर तब से जाने जिगर, मिली जब से नजर तब से जाने जिगर, मैं हो गया दीवाना, मैं हो गया दीवाना।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहला मैसेज आया हुआ है, यानी कि कायनात जी का, ओके अमीना खान जी का, सरफराज जी का, एमडी फैज जी का, और सर्वजीत सेठी जी का, रवि मर जी का, सुनीता गोप जी का, ज्योति जी का, विपिन त्यागी जी का, गजानंद जी का, आनंद जी का, प्रमोद जी का, मतलब बहुत से दोस्तों का। तो सीधे कॉल लगाते हैं कायनात जी को। जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में। बहुत बहुत वेलकम है कायनात जी।
1: कैसे हैं आप आज?
0: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और फर्स्ट टाइम आप आई और बाजी मार गई।
1: गर्मी बहुत ज्यादा है। जी अच्छा। हाँ गर्मी बहुत। अरे गानों की बात हो हम ना बता पाए तो हमारा होना बेकार है। कायनात को अगर ना पता हो अपने कायनात के बारे में भी बेकार है।
0: जी बिल्कुल। लेकिन मतलब आपकी आवाज भी बहुत ही अच्छी है और पता और क्या कहें, मतलब ये जो गाना आपने पहचाना फटाक से भेज दिया आपने, बिल्कुल सही भेजा है।
1: जी वही ना बोला की तमन्ना है,
0: प्यार का इरादा
1: है और एक वादा है जानम।
0: बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी, और बताइए तो
1: जी हमारी रिक्वेस्ट है मस्ती मस्ती गाना बता।
0: मस्ती मस्ती सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: ओ जानी ओ मेरी जान, थैंक यू।
0: मस्ती करते रहिए।

0: और अगला अंतरा ध्यान से सुनिए।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, परदेश जाके साजन, ना लाना मेरी सौतन, ना लाना मेरी सौतन, परदेश जाके साजन, ना लाना मेरी सौतन, परदेश जाके साजन, ना लाना मेरी सौतन, दिल पे ना जुल्म करना, मर जाएगी ये जोगन, मर जाएगी ये जोगन।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो।

0: रहे हैं।
1: और आज के ये भी यहाँ पे विनर बन चुके हैं आरजे सोनी जी। ओके जी, तो इन्हें मैं कॉल लगाने वाला हूँ। और उनके बाद है हमारे साथ यानी विष्णु जी। अच्छा ओके, नाही जी का है जवाब सही है बिल्कुल। और एक साहब और भी हैं, क्या नाम है, थान सिंह लोधी जी, इनका जवाब सही है। रवि मोहरे जी का भी जवाब सही है। और साथ ही साथ अनंत जी का जवाब सही है, ज्योति जी का जवाब सही है, रुबीना नाथ जी है, सुनीता गोप जी है, प्रमोद जी है, दिगंबर जी है, विलास निकम जी है। और ओके अच्छा जी, ओके जी। और चलिए फिलहाल अगला कॉल लगाते हैं विनर जी को। आरजे सोनी जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है और आज के विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको।
2: नमस्कार।
1: और कैसी हैं आप?
2: जी बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे
1: हैं? हम तो एकदम झकास बिंदास, मतलब मजे में। और विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको
2: जी।
1: आपको विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई
2: जी। आपको भी धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे? जो विनर होता है वो कोई भी गाना सुन सकते हैं, कुछ भी जो जो आप कहें।
3: भोजपुरी गाना है।
1: हाँ हाँ,
3: सोना
1: अच्छा, टोना लागे ना बहुत ही प्यारा गाना है, मैंने एक बार सुना है।
3: Okay.
1: टोना लागे ना, लागे ना हमरा सोना
3: के।
1: हाँ हाँ ठीक है, बहुत ही प्यारा गाना है और ये तो मुझे बहुत ही पसंद है ये गाना सच में।
3: Okay.
1: ये शायद अभी इसकी आवाज यानी कि किन की है? शायद इनकी प्रियंका सिंह की।
3: वो मुझे, हाँ प्रियंका सिंह है और एक और कोई है साथ में, याद नहीं है मुझे।
1: ओके, एंजॉय कीजिए।

0: और यहाँ पे सुनवाता हूँ अगला अंतरा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है, तूने बेदर्दी मेरी हालत कैसी कर दी है। उफ, अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है, तूने बेदर्दी मेरी हालत कैसी कर दी है।
3: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
4: हाय हाय हाय हाय।

0: ओह माय गॉड, मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है यानी कि प्रमोद कुमार जी का, ये भी आज के विनर बने हुए, बहुत बहुत बधाई हो। और नाहिद जी है, रुबीना जी है, विलास निकम जी, इशाक जी है, विपिन जी है, और सर्वजीत जी है, ज्योति जी है, और हमारे ये नामहीन कथान सिंह लोधी जी, और भी देवपाल जी हैं, गजानन जी हैं, इमरान जी हैं, दिगंबर जी हैं, रूपचंद जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। रिंकी पिंकी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। तो सीधे कॉल लगाते हैं प्रमोद जी को आज के विनर के लिए। भाई प्रमोद जी, बहुत बहुत आपका आपका वेलकम है एंड बधाई हो आपको आज आज के विनर बने हैं।
1: थैंक यू सर, आपको
0: बधाई। ओके जी, हेलो जी जी जी, और बोलिए।
1: आवाज आ रही है सर?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ बताइए सर जी, और कौन सा गाना सुनूं सर, बताइए।
0: वो तो आप जानिएगा ना,
1: आप अपनी मर्जी से बताइए सर, कौन सा भी।
0: मैं कैसे बता दूं?
1: तो सर आप अपनी आप प्ले करिए सर, कोई सा भी गाना अपनी पसंद का सर।
0: मुझे
1: मैं हाँ, तो सर आप पसंद है।
0: अभी मुझे दिख रहा है गहरा हुआ, मैं प्ले कर दूं?
1: हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू।

0: अगला अंतरा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: ये वफा क्या है? एक धोखा है, पर दीवानों को किसने रोका है? झूठे वादे हैं, झूठी कस्में हैं, लोग कहते हैं झूठी रस्में हैं। यहाँ बेअसर हैं सदाएं सभी, यहाँ सब मोहब्बत में नाकाम हैं। यहाँ चाहतों का गुजारा नहीं, ये गलियाँ ये कूचे तो बदनाम हैं।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

बिल्कुल इस बार जीत गई है यानी कि कायनात जी, और यही गाना सुनना चाहती हैं कि दिल का क्या करें सही। बिल्कुल सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए। और बहुत से दोस्तों के भी मैसेज आए हुए हैं, और दो नंबर में थी अमीना खान जी और

0: पहचानी है और देखते हैं किनका नंबर आता है और देखते हैं सबसे पहले किनका जवाब आता है।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: सावन की भीगी रात हो तुम, जलती हुई बरसात हो तुम, मीठी सी लगन लगी है, ये कैसी अगन जागी है, ये कैसी अगन जागी है, हो जैसे चमकी चांद सितारों में, जैसे चमकी चांद सितारों में, हो ऐसी चीज तो एक हजारों में।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहे।

और इसका एक ही जवाब आया हुआ है अमीना खान जी का, सिर्फ एक जवाब है और बाकी सभी जवाब यानी गलत है। तो सीधे अमीना खान जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ और उनका जवाब था यानी कि कहाँ लाया मेरा यार। तो सुनवा दिया अमीना खान जी, एंजॉय कीजिए।

ओके जी, तो स्पेशल कॉल करता हूँ सबसे पहले सर्वेश भगत जी को। अच्छा इनका इनका नो कॉल है। अच्छा ओके, तो मैं इन्हें कॉल नहीं करूंगा, नो प्रॉब्लम। सुनील जी को कॉल लगाता हूँ।

0: भाई सुनील जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में, कैसे हैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: आ रही है।
0: कैसे हैं जी?
1: नमस्कार जी, बहुत बढ़िया सर, आपने सुनाइए सर।
0: एकदम हम झकास हैं। एक्चुअली स्पेशल कॉल किया गया है, आपने पार्टिसिपेट किया है, मतलब उस समय से लगे हुए हैं, नंबर आपका नहीं लगा तो, इसके लिए स्पेशल कॉल किया गया
1: जी,
0: है।
1: जी, धन्यवाद सर।
0: तो बताइए, आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: ये एक गाना है सर, फिल्म का नाम है खतरनाक और गाने के बोल हैं जीना है हमका तोहरी गली में। ये स्पेशल मैंने रखा था आपके लिए, लेकिन आज ही बजवा दे रहा हूँ इसको।
0: जीना है हमको तोहरी गली में। बहुत अच्छा
1: जी जी, गोविंदा और क्या नाम है, संजय दत्त पे फिल्माया गया है। अच्छा, सचिन अच्छा।
0: ओके जी, तो हाँ, मैं तो जरूर
1: पूरा पूरा चलाइएगा तो बड़ा मजा आएगा सर।
0: पूरा, ओह माय गॉड, आज मुझे एक गाना आ रहा है याद। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको यही गाना मैं सुनवाने वाला हूँ, आप सुनिए इसको ध्यान से, क्योंकि आपकी पसंद मेरी पसंद है कि नहीं?
1: जी जी जी जी जी सर।
0: ओके, तो एक मिनट।
1: ओके सर,
0: मैं सुनाऊंगा, एंजॉय कीजिए।

0: चाहे दूसरी गली में जाओ ना।
1: जिस फैशन से पोजीशन से मैं महफिल में जब जाता हूँ लोग कहते हैं, जिस फैशन से पोजीशन से मैं महफिल में जब जाता हूँ लोग कहते हैं, स्टाइल तो देखो, स्माइल तो देखो, ये चाल तो देखो, ये ढाल तो देखो।
2: ए मैडम, दुनिया हमारे पीछे, हम तुम्हारे पीछे, जीना है हमका तुहरी गली में का।

0: बहुत ही लंबा गाना है, 8 मिनट का नहीं प्ले कर सकता, सीधे कॉल लगाता हूँ। अगला कॉल किन को लगाना है? रवि मोहरे जी को लगा देता हूँ। रवि मोहरे जी, बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कॉल करने के लिए, बहुत कोशिश की लेकिन मेरा नंबर नहीं लग पाया।
0: अच्छा जी जी बिल्कुल।
1: और कैसे हो सर जी आप? बहुत दिनों बाद बात हो रही है मेरी, 2-3 हफ्ता हो गए।
0: अच्छा जी, हम तो एकदम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: स्वास्थ्य बढ़िया?
0: हाँ हाँ, आप बताइए।
1: हम भी ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया।
0: और क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं?
1: बस अब प्रोग्राम सुन रहे हैं हम तो अभी।
0: अच्छा जी, बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना तो मैं आपको आपकी पसंद से सुनवा दीजिए सर, बहुत अच्छा सॉन्ग सुनवाते हैं आप।
0: तो ठीक है, तो मैं सुनवाता हूँ एक तो गाना, मुझे आज था याद, आज मैं मतलब ये गाना मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो ये दामिनी फिल्म का गाना है, सच्चा आशिक है तो एंजॉय कीजिए, है ना?

0: ओके तो आज के यानी विनर बनी हुई है अमीना खान जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मैं आपको कॉल लगाऊंगा, अगर जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे। फिलहाल एक कॉल लगाता हूँ हमारे गजानंद जी को, इन्होंने भी बहुत ही प्रयास किया है लेकिन नंबर नहीं लगा इनका।
1: तो उतर जाएगा दर्द तेरा प्यार नशा है, तो उतर जाएगा।
0: गजानंद जी बहुत बहुत बधाई हो आज को स्पेशल कॉल के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: और कैसे हैं?
2: आज का प्रोग्राम एक नंबर झकास शानदार हो रहा है।
0: थैंक यू सो मच। तो बताइए।
2: हमने बहुत कोशिश की मगर आज नंबर नहीं लगा।
0: कोई बात नहीं, तो अभी क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: आएगा मजा बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
0: अच्छा अच्छा, आएगा मजा, आएगा टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आएगा, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया
2: मजा तो अच्छा।

0: अमीना खान जी, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विनर बनी है लीडर बोर्ड में, बहुत बहुत बधाई हो आपको।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं कबूल होती है, वैसे ही हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे क्या कहते हैं, मतलब आज आपकी मतलब यानी कि तीन आज मतलब इन दो बार आपसे मेरी बात हो गई है कि नहीं?
1: जी जी जी, तो दुआ कबूल हो गई ना। हाँ। मैं चाहती थी कि मेरी सामने से बात हो।
0: अच्छा अच्छा, ओहो, तो आज आपने पार्टिसिपेट किया और मौका मिल गया है कि नहीं?
1: जी, मैं लगी थी कि बस मैं जीत जाऊं जल्दी और आपसे मेरी बात हो।
0: ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। आपने पार्टिसिपेट किया और आपसे और मुझे भी आपसे बात करने का मौका मिला। और माशाल्लाह आवाज बहुत आपकी भी बहुत प्यारी है और बहुत अच्छा बात कर रही है, है ना?
1: जी शुक्रिया जी।
0: ओके, तो बताइए अभी आप क्या कर रही थी?
1: मैं बस घर के काम कर रही थी।
0: अच्छा, आज कुछ स्पेशल बना रही हैं?
1: आप आएंगे तो जरूर बनाऊंगी।
0: बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम तो हाजिर हैं।
1: आइए जी, आइए महाराष्ट्र औरंगाबाद संभाजी नगर में।
0: अच्छा जी, बिल्कुल आएंगे जी, जब भी मौका मिलेगा मुझे, है ना?
1: जी बिल्कुल वेलकम।
0: ओके जी, तो बताइए अभी आप यानी क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं सॉन्ग सुनूंगी अभी जो न्यू बना है, गुलाबी साड़ी आनी लाली लाल लाल।
0: अच्छा जी,
1: महाराष्ट्रियन थोड़ा मिक्स।
0: जी जी, तो सुनवा दिया
1: जी, बहुत बहुत जी, शुक्रिया।

0: जी संजय सहनी जी, बहुत बहुत बधाई हो, आज स्पेशल कॉल में आपका नंबर लगा हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो।
1: जी जी जी जी, थैंक यू सर।
0: और कैसे हैं जी भाई संजय सहनी जी?
1: जी जी जी, बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छी बात है ना, बिल्कुल। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में? आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा नेटवर्क करिए, मैं आएंगे प्लीज। ओ माय गॉड, नेटवर्क नहीं है आपकी तरफ।
1: सर मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी तो बहुत सॉन्ग सर, मोहम्मद अजीज की आवाज है सर।
0: जी, न फनकार तुझसा कोई बात आया है ना, चलिए सुना दिए, एंजॉय कीजिए।

0: एमडी फैज जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको स्पेशल कॉल के लिए। और कैसे हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दुआ।
0: तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज सुनवा दीजिए, एक गाना है।
0: हाँ।
1: राम कसम दिल्ली सरकार हिला दी।
0: राम कसम दिल्ली सरकार सुनवा दिया।

0: भाई विपिन जी, स्पेशल कॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। कैसे हैं आप?
1: जी जी नमस्कार सर, कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सबकी दुआएं हैं।
1: सर और बताएं सर, क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ?
0: जी, जी,
1: बारिश वगैरह हो रही है उधर?
0: बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बारिश का इंतजार है।
1: अच्छा
0: ना?
1: अच्छा अच्छा सर, अपनी तरफ तो अच्छी बारिश हो रही है सर, मौसम अच्छा है
0: बहुत। तब एंजॉय कीजिए अच्छे से, है कि नहीं? रेडियो हॉट स्टार सुनते
1: हुए। जी सर।
0: तो विपिन जी, आज क्या सुनना पसंद करेंगे बताएंगे?
1: आज सर कोई भी सुना दीजिए अपनी पसंद का। अच्छा सा
0: अपने पसंद का? मेरे पसंद का सुनिएगा आप, अपने पसंद का। मेरे पसंद?
1: अच्छा चलिए, ये सुना दीजिए, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है।
0: मोहब्बत की नहीं जाती। ओके जी, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: ओके सर, थैंक यू।

0: मस्ती जी, आपका नमस्कार, बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरा मस्ती के स्पेशल कॉल में। कैसे हैं आप
1: जी? मैं स्वस्थ हूँ सर
0: जी। आपका नाम सर जी?
1: थान सिंह लोधी।
0: अच्छा, थान सिंह लोधी जी आप हैं। जी जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है। और एक्चुअली आज आपने उस समय से मतलब देने की कोशिश किया लेकिन आपका नंबर नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्पेशल कॉल जिंदाबाद है ना।
1: जी जी जी।
0: तो आज बताएंगे सर जी, आज आप यानी कि क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मैं मोहरा फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, कोई भी सुना दें आप।
0: मोहरा के तो सभी गाने अच्छे हैं। या तो यानी कि वो तुझ, यानी कि एक तो गाना है वो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और ना कजरे की धार, कौन सा?
1: ना कजरे की धार वाला।
0: ना कजरे की धार, ठीक है सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए।
1: जी जी
0: मैंने सुनवा
1: दिया। ओके
0: वेलकम
1: जी, थैंक यू,
0: वेलकम जी।

0: भाई आपको मैंने कॉल किया था लेकिन आपका नंबर शायद बिजी था। बहुत बहुत आपको हेलो।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम अमन भाई
0: जी। और कैसे हैं आप भाई इमरान भाई?
1: बहुत बढ़िया भाई।
0: और स्पेशल कॉल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज ये सुना दो, मूवी का नाम है आज का अर्जुन, गाने के बोल है गोरी है कलाई। आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ?
0: हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
1: आज मैं पहली बार मतलब मैसेज किया हूँ ऐप पे आपके। सुनते हैं मेरे पापा सुनते हैं, मैं तो भागलपुर बिहार से हूँ, मैं मुंबई में रहता
0: अच्छा,
1: हूँ
0: अच्छा, हाँ, हाँ।
1: पापा सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं आपका चैनल आरजे वंशिका, आपको अमन भाई को आपको सुनते ही रहते हैं पापा एनी टाइम, हाँ। सुबह से शाम तक रात तक 10 बजे तक सुनते हैं पापा।
0: अच्छा,
1: पापा
0: अच्छा।
1: का काम है सिलाई का।
0: अच्छा, तो उनका नाम क्या है?
1: घर पे ही काम करते। पापा का नाम राजू है। पापा को फोन उतना चलाना नहीं आता।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: खाली सुनते इंजॉय करते पापा। और आज मैंने आज मेरा कॉल भी आया था उधर से वंशिका मैडम की तरफ से।
0: अच्छा।
1: मैंने आंसर भी दिया था दिन में। तो आज से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, अब देखिए आपके पार्टिसिपेट में गेम खेलता रहूंगा, जुड़ता रहूंगा आप लोगों के साथ, जान पहचान हो जाएगी। वैसे तो रेडियो सुनने का शौक मेरा पुराना ही है, क्योंकि पापा के साथ काम करते करते आदत लग गई है रेडियो सुनने की, गाना सुनने की। रेडियो सुनने का शौक पुराना अपना।
0: ओके, तो अच्छी बात है ना, बस ऐसे हमेशा अपना यानी प्यार बनाए रखिए।
1: हाँ,
0: कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बताइए आज, हाँ आपने गाना तो बता दिया, और कुछ कहना है आपको?
1: और कुछ नहीं कहना, आपसे धीरे धीरे बात करते करते जान पहचान हो जाएगी।
0: बिल्कुल हो जाएगी। तो गाना सुनवा दूँ?
1: आप बिहार से, आप कहाँ पे हैं भाई? कहाँ के?
0: मैं सिवान बिहार से हूँ।
1: सिवान
0: जी।
1: अरे आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आओ ना मेरे घर पे इधर 30 तारीख को।
0: आप घर कहाँ है?
1: भागलपुर।
0: भागलपुर
1: भागलपुर भागलपुर सकुल्ला चक।
0: तो भागलपुर तो बहुत दूर है।
1: कव्वाली भी है। अच्छा। अरे कव्वाली भी आओ ना।
0: अच्छा,
1: देखना उसको नेट पे, देखना कव्वाली है, हर साल होती है।
0: ओके ओके बिल्कुल मैं चेक करूंगा, है कि नहीं? हाँ ओके, तो गाना सुनवा दो।
1: बिल्कुल
0: ओके, एंजॉय कीजिए
1: गाना। आपको डेडिकेट, सबको डेडिकेट।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।